0: ആകാശവാണി സമയം 5 മണി. ഇപ്പോൾ
1: ഹേ ആകാശവാണി കാ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര ഹേ ആജ് കെ ഹിന്ദി പ്രസാരണ മേ ആയി സുൻതേ ഹേ ദേവിപ്രിയ ഓ കി വാർത്ത ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ കെ ഉപന്യാസോ മേ ഉത്തരാധുനികത.
2: उत्तर आधुनिकता वर्तमान युग की सांस्कृतिक और उसके चिंतन एवं सौंदर्य शास्त्र को चिंतित करने वाला एक व्यापक पारिभाषिक शब्द है. आधुनिकता की भांति इसके अर्थ भी बदल रहे हैं. इसमें भी अंदर विरोध की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इस तथ्य के अवलोहन नहीं की जा सकती. हमारा युग आधुनिकतावाद के दौर से निकलकर उत्तर आधुनिकता में प्रवेश कर चुका है. उत्तराधुनिकतावाद बहुआयामी और दूरगामी प्रभाव का अनुमान इस बात से भी होता है कि फिल्म से लेकर फैशन तक, साहित्य से लेकर संस्कृति तक, विज्ञान से लेकर विज्ञापन तक प्रत्येक वस्तु, विधा और ज्ञान, इतिहास, दर्शन, समाज और मीडिया यानी जीवन के प्रत्येक पहलू और अभिव्यक्ति भी इसके दायरे में शामिल है. ये तो उत्तराधुनिकता पर जिस गति से विचार हो रहा है, जिस रफ्तार से साहित्य में आ रहा है, उसे देखने से हमें पता चलेगा कि उत्तराधुनिकता साहित्य क्षेत्र में विशेषतया कथा साहित्य में किस प्रकार अपनी जड़ को भीतर की ओर ले जाती है. उत्तराधुनिकता अपनी संपूर्ण व्याख्या खुद बुना करती है, इसलिए उसकी कोई संपूर्ण व्याख्या और संपूर्ण पुस्तक नहीं लिखा जा सकती. हर एक की अपनी उत्तराधुनिकता है और हो सकता है फिर भी त्योकार, जेम्सन और बैद्रिया को इसका मौलिक व्याख्याकार कहे जा सकते हैं. देरिदे उसके विघटन को संभव करते हैं. सब कुछ का अंत नहीं, साथ चलता रहा इतिहास और विचार, मस जाएगा तो भी काम चलेगा. यह तो काम चलना है, साहित्य नहीं, वही मौजूद है. अतः साहित्य के सामने चुनौती है और नहीं भी है. एक तरह के साहित्य चुनौतियों को आगे दम तोड़ लेगा, दूसरे तरह साहित्य अत्यधिक मीडिया रचे और जनसंचार रचे, चाहे कंप्यूटर रचे, चाहे तकनीक रचे, विधाता की रचना की वर्चस्व यह नई कृत हमेशा जी जाएगी, वह सराह भी जाएगी और उसका मूल्यांकन भी होगा. उत्तराधुनिकता आधुनिकता को खारिज कर सकता है, पर जीवन की निरंतरता और उसके अबोध को खारिज करने का दम उसमें दिखलाई नहीं देता. जॉन मैकगोवन ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न एंड इट्स क्रिटिक्स में उत्तर आधुनिकता को विवेचित करते हुए कहा कि एकेडमी हलकों में 1975 के आसपास जो प्रेजेंट का लेकर वैसे शुरू हुई, वह पश्चिमी पुनर्जागरण और उससे पैदा हुए ज्ञानोदय का मूल सूत्र को भी प्रशंसनीय करती है. इस प्रकार कई विद्वानों ने अपना मत प्रकट करते हैं. उत्तर सदी के आरंभिक समय में उत्तराधुनिकता के विचार के सबसे पहले कला का इतिहास में मुख्य रूप से वास्तुकला में देखा गया है, जहां यह तात्कालीन कला और आंदोलनों के विभिन्न प्रवृत्तियों के साथ ही आधुनिक आवागर्द के अभिप्राय और उनकी उपलब्धियों के बीच गहरे विवाद के संदर्भ में देखा गया है. लेकिन आरंभ में इसका सीमित प्रयोग के बावजूद उत्तर आधुनिकता का प्रभाव को और भी विस्तार अन्य अनुशासनों में भी देखा जा सकता है, न कि केवल अन्य अनुराग में इसकी व्याप्ति को, बल्कि उनके बीच विभेद को समाप्त कर देने को भी. रूप में उत्तर आधुनिकता का कोई निश्चित व्याख्या नहीं है, उसकी परिभाषा बदलती रहती है. इसकी अस्पष्टता को लेकर देवेंद्र ईश्वर ने सवाल उठाया कि क्या उत्तर आधुनिकता एक मनोदशा है या माहौल, प्रवृत्ति है या परिदृश्य, फैशन फ्रेंड या फ्रीक, विचार है या विफ्रम है, विद्रोह है या दमित है, दलितों नारियों अल्पसंख्यकों मुक्ति संघर्ष का नवदर्शन आंदोलन है या महज एक आवाह. उत्तर आधुनिकता 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित एक बौद्धिक सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रवृत्ति है, जो आधुनिकता के सिद्धांतों, सार्वभौमिक सत्य, तर्कवाद तथा प्रकृति के विचारों पर प्रश्न

रचने लगाती है। यह किसी एक निश्चित सत्य या महान आख्यान को स्वीकार नहीं करती, बल्कि बहुलता, विविधता, विखंडन, स्थानीयता और वैकल्पिक दृष्टिकोणों को महत्व देती है। हिंदी साहित्य में उत्तराधुनिकता का प्रभाव 1980 के दशकों के बाद अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस दौर में साहित्यकारों ने स्थापित मान्यताएं, इतिहास, सत्ता, संरचना और सामाजिक मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन किया है। समकालीन हिंदी साहित्य में गीतांजलि श्री का एक महत्वपूर्ण कथाकार है और उनका स्थान भी अलग है। जिनके उपन्यास उत्तराधुनिकता, संवेदना और शिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपने लेखन में इतिहास, स्मृति, स्त्री, अस्मिता, भाषा, राष्ट्र तथा पहचान जैसे प्रश्नों को नए ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके प्रमुख उपन्यासों में माई, हमारा शहर, उस बरस, तिरोहित, खाली जगह तथा रेत समाधि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उत्तर आधुनिकता की अवतारणा गीतांजलि श्री के उपन्यासों में यही विशेषताएं मुख्य रूप से दिखाई देती है कि आपकी रचनाओं में किसी एक सत्य या विचारधारा के वर्चस्व का विरोध है। यही विशेषता लेखन का सौष्ठव भी हमें देखने को मिलती है। इतिहास का पुनर्पाठ गीतांजलि श्री के उपन्यासों में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आप इतिहास को केवल घटनाओं, तिथियों और राजनीतिक दस्तावेजों का संग्रह नहीं मानती, बल्कि उसे स्मृतियां, अनुभवों, व्यक्तिगत कथाओं और मानवीय संवेदनाओं के माध्यम से पुनः देखने का प्रयास करते हैं। आपकी रचनाओं में इतिहास का केंद्र राजा, शासक और सत्ता नहीं बल्कि सामान्य मनुष्य होते हैं। उत्तराधुनिकता की दृष्टि के अनुसार इतिहास कोई अंतिम और निर्विवाद सत्य नहीं है। प्रत्येक ऐतिहासिक घटना के अनेक पक्ष होते हैं। गीतांजलि श्री इसी बहुलतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इतिहास को स्थापित आख्यानों को चुनौती देती है और उन आवासों के सामने लाती है कि जो मुख्यधारा के इतिहास में उपेक्षित रही है। गीतांजलि श्री अपनी उपन्यासों में विभाजन का नया दृष्टिकोण रेत समाधि में दिखलाया है। भारत विभाजन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं रह जाता, बल्कि मानवीय संबंधों, स्मृतियों और विजड़न की त्रासदी के रूप में भी उभरता है। उपन्यास की वृद्ध नायिका सीमाओं को पार कर अपने अतीत की खोज करती है, जिससे विभाजन इतिहास का एक वैकल्पिक और मानवीय पक्ष सामने आता है। स्मृति और इतिहास का संबंध व्यक्तिगत स्मृतियों को इतिहास के पुनर्निर्माण का आधार बनाती है। आपके पात्र अतीत को याद करते हुए इतिहास की नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार इतिहास केवल दस्तावेजों में नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना और स्मृति में भी जीवित रहा। गीतांजलि श्री अपने रचनाओं में हाशिए के आवासों को समावेश किया है। उनकी रचनाओं में स्त्रियां, वृद्ध, विस्थापित और उपेक्षित लोग इतिहास के केंद्र में आते हैं। गीतांजलि श्री के उपन्यासों में इतिहास का पुनर्पाठ उत्तर आधुनिकता चिंतन का महत्वपूर्ण पक्ष है। वे इतिहास को सत्ता केंद्रित दृष्टि से मुक्त करके उसे स्मृति, अनुभव, स्त्री दृष्टि, मानवीय संवेदना से जोड़ती है। स्त्री अस्मिता और पहचान का प्रश्न, यह उत्तर आधुनिकता स्थिर पहचान को अस्वीकार करती है। गीतांजलि श्री के उपन्यासों स्त्री पात्र अपनी पहचान की खोज में निरंतर संघर्ष करती है। माई में माँ का चरित्र परंपरागत स्त्री छवि का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उपन्यास उसके मौन, पीड़ा और अंदर द्वंद्व को उजागर करता है। इस प्रकार स्त्री की पहचान को एकांगी रूप में नहीं बल्कि बहुआयामी रूप में प्रस्तुत किया है। तिरोहित और रेत समाधि और स्त्री पात्र सामाजिक बंधनों को तोड़कर स्वयं को नए रूप में परिभाषित करती है। वे परंपरागत भूमिकाओं को अतिक्रमण करती है और अपनी स्वतंत्रता पहचान निर्मित करती है। विखंडित कथनक और प्रयोग धर्म शिल्प उत्तर आधुनिकता साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। कथनक का विखंडन गीतांजलि श्री उपन्यासों में रेखांकित कथा प्रवाह के साथ पर बिखरे हुए अनुभव, स्मृतियां और चेतना प्रवाह दिखाई देते हैं। विशेष रूप से रेत समाधि में कथा आगे पिछले चलती रहती है। घटनाएं क्रमबद्ध रूप से नहीं आती बल्कि स्मृतियों और अनुभवों के माध्यम से विकसित होती है। इससे पाठकों को अर्थ

0: निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करनी पड़ती है। उनकी भाषा की पारंपरिक कथन शैली से भिन्न वे शब्दों को, प्रतीकों और रूपकों को अभिनव प्रयोग करती है, जिससे पाठकों में बहुस्तरीय अर्थ उत्पन्न होते हैं। गीतांजलि श्री अपने उपन्यासों में स्त्रियों, वृद्धजन तथा सामाजिक रूप से उपेक्षित पात्रों को केंद्र में रखते हुए सृजन किया है, तो उनके विमर्श मुख्य विषय के रूप में भी वे ये सब चीजों को अपनाया। रेत समाधि एक 80 वर्षीय महिला की नायिका बनाकर स्वयं एक उत्तराधुनिक हस्तक्षेप, सामान्यतः वृद्धावस्था को निष्क्रियता से जोड़ा जाता है, किंतु यह वृद्ध स्त्री स्वतंत्र प्रेम और आत्म अन्वेषण के प्रतीक बन जाती है। उपन्यास में ट्रांसजेंडर पात्र रोजी का चित्रण भी सामाजिक विविधता और बहुलता को रेखांकित करता है। प्रेम, स्मृति और मानवीय संवेदनाएं राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर एक व्यापक मानवीय दृष्टि प्रस्तुत करती है। गीतांजलि श्री की भाषा अत्यंत प्रयोगधर्मी है। वे लोक भाषा, मुहावरे, प्रतीकों और सांस्कृतिक संदर्भों का सृजन उपयोग करती है। उनकी रचनाओं में अनेक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक संदर्भ मिलते हैं। रेत समाधि उत्तराधुनिकता के श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। इसमें विखंडित कथानक, बहुस्तरीय भाषा, इतिहास का पुनर्पाठ, स्त्री अस्मिता, सीमाओं के अनुकरण और पहचान का तलाश जैसी सभी प्रमुख उत्तराधुनिक विशेषताएं विद्यमान है। यह उपन्यास निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता, बल्कि अनेक संभावनाओं और व्याख्याओं के लिए खुला रहता है। यही उनकी उत्तराधुनिकता की शक्ति है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गीतांजलि श्री के उपन्यास हिंदी साहित्य के उत्तराधुनिक चेतना से सशक्त प्रतिनिधि है। उत्तराधुनिकता साहित्य में मौजूद नए अर्थों की खोज, श्री अस्मिता की पहचान, पहचान की बहलाता आदि विशेषताओं को सामंजस्य देखने को मिलते हैं। उन्होंने साहित्य को केवल कहानी कहने का माध्यम नहीं, बल्कि स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने और नए अर्थों की खोज का क्षेत्र बनाया है। यदि समकालीन हिंदी साहित्य की ओर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि गीतांजलि श्री की कथा साहित्य को नई वैचारिक और शिल्पगत संभावनाएं प्रदान की है। अंततः कहा जा सकता है कि गीतांजलि श्री की उपन्यासों में उत्तराधुनिक साहित्य का उन मूल्यों को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करते हैं जो बहुलता, स्वतंत्रता, अस्मिता, संवाद और मानवीय संवेदनाओं को केंद्र में रख के उनकी रचनाओं में यह विश्वास दिलाती है कि साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं, बल्कि समाज को नए दृष्टिकोण से देखना और समझने का माध्यम भी है।
1: अभी आप देवीप्रिया ओ की वार्ता सुन रहे थे। गीतांजलि श्री के उपन्यासों में उत्तराधुनिकता। इसी के साथ आज का हिंदी प्रसारण यही समाप्त होता है। नमस्कार।

0: സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44 മിനിറ്റും 52 സെക്കൻഡും. ഇനി സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 കേൾക്കാം. ഡൽഹിയിലെ
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए. पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल. सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं. मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया. जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी. आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है. प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा,

0: कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे।

0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

0: और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है, वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज, एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South,